0: अभी वासुदेव क्या बात है, नहीं रही संभव यार, क्या लिखिया, क्या गाया, क्या कॉम्पोजिशन है, गाने का एक एक बोल मैं कहना कमाल ही है। सो राजवंत कौर का नंबर दे दिए थोनू, गड्डिया की घर की इंश्योरेंस करवानी है, ऑटो होम कमर्शियल इंश्योरेंस का सब तो टॉप द रेट राजवंत, राजवंत 30 तो वध कंपनियां नाल डील करते हैं, 25% तक का डिस्काउंट लग देंगे। राजवंत का फोन नंबर है 6476744735, 6476744735। राजवंत कौर नू कॉल जरूर करो। सो स्टूडियो च गलबात हो रही है थोड़ी साड़ी, नंबर है अपना 9056733337, 9056733337। फीफा वर्ल्ड कप की ग्रैंड ओपनिंग दे विच टोरंटो च कुछ एक आर्टिस्ट अनाउंस हो रहे हैं जिहड़े परफॉर्म कर रहे हैं, अलानिस मोरिसेटी, एलेसिया कारा, अलियाना, जेसी रेयस, माइकल बूबले, नोरा फतेही, संजोय वेजे, ड्रीम ते विलियम प्रिंस। आप तो भाई नोरा नू जानते हैं, संजोय नू जानते हैं, नहीं मैं माइकल नू भी जानता, जेसी नू भी जानता, नहीं एलेसिया भी ठीक है, चलो है काफ़ी नामवर जिहड़े आर्टिस्ट ने जिहड़े परफॉर्म कर रहे हैं, जिहड़े जिहड़े सिटीज कंट्रीज विच ये मैचेस वर्ल्ड कप दे हो रहे, उत्थे उत्थे वक्रे वक्रे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे ने। सो प्रोग्राम पंजाबी दा ना, स्टूडियो दा नंबर अपना 9056733337। ते कोई भी नंबर चाहिए थानू किसी भी स्पॉन्सर दे दस दो, मेरे को थोड़ा चिर हैगा गाना गुणा कोई लवाना, दस दो कॉल कर लो, वीकेंड है ते नाले शाम दा वेला, ते नंबर है स्टूडियो दा 9056733337। ग्लोबल कंफर्ट एयर दे तेजपाल भाजी नू कॉल करो, नवी फरनेस लवानी है, नवा एसी लवाना तो तेजपाल भाजी ग्लोबल कंफर्ट एयर, नवा फरनेस एसी लवाओ तो $1800 तक का रीबेट पाओ। नंबर है 9057909080। तेजपाल भाई जी नाल गलबात करो, 9057909080। 0026 हाँ जी,
1: हाँ जी सत श्री अकाल जी,
0: किवें हो जी?
1: बस ठीक ठाक जी, मैं हुण हुणे घर पहुंचा सीगा
0: बड़ा जानते हो नोरा फतेही नू, है मैं अठ होर ना ले उन्हां चो कोई तैनू पता नहीं, नोरा दा नाम लैदा तां जद्दी फोन कर लिया तुसीं तां आईफोन लाया जिवें तुहाडी गुआंढण हुंदी है नोरा फतेही हां ठीक है ठीक है, चलो करो एंजॉय, चलो शुक्रिया जी, थैंक यू। कहते जी दस तोतला बोलती है, तुहानू तुसी कित्थे बोलदी नू सुन लिया भी तोतला बोलती है, चलो प्रोग्राम पंजाबी लैना तुसी सुन रहे हो, नंबर है अपना 9056733337, 9056733337 नंबर है अपना, अपने बंदे भी ना कमाल ही ने है। ओके एक मैं थोनू न्यू हाइट्स किचन का नंबर फिर तो दवा, नवी किचन तैयार करवानी है टॉप ऑफ द लाइन, न्यू हाइट्स किचन दे जसपाल राय बाई जी नाल गलबात करो, ते किचन बा कमाल, तुसी कहोगे यार नवी इन्नी सोहनी किचन साढ़े किसी रिश्तेदार की भी है नहीं गी, हाई एंड किचन, नवे काउंटर टॉप, वैनिटीज, कोई टीवी यूनिट, कोई नवा बार रेडी करवाना, हाई एंड जॉब्स, मेपल वुड, एच डी एफ वुड, हाई ग्लॉस मटीरियल, ओक एंड एम डी एफ, पी वी सी नाल काम करते हैं, थोड़ी सैटिस्फैक्शन इन्हें पहली प्रायोरिटी है, फ्री एस्टिमेट है, अंडर माउंट सिंक फ्री है मेरे नाम नाल, डिस्काउंट मेरे नाम नाल मिल रहा है, 4168591920 4168591920 4168591920 G8142। हेलो
2: हेलो
0: सत श्री अकाल, किदा बहुत वधिया भाई जी,
2: पिंड
0: याद आ रही अज
3: ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ।
0: ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
3: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ।
3: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਤਲੀ ਦੇਖੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਬਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨੀ, ਇੰਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਹਾ। ਓਕੇ, ਪਿੰਡ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੋ ਕਬੋਲ।

सतगुरु होए दयाल दसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल नकब हूँ झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं माणदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत शाम दे विच खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान, जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संधु दे नाल।

0: एडवाइजरी दवाओगी। सो 4372643175 अगे जाके फिर गल्लबातें करांगे यूनियन ग्लोबल एडवाइजरी दे नाल। फिलहाल एक ब्रेक ले ली, थोड़ी जी म्यूजिकल चाह की गलबात चल रही है। नागपाल साहब तुसी चाह पींदे हो?
1: हाँ जी, विदाउट कैफीन वाली।
0: विदाउट कैफीन? अच्छा, वो की होंगी है विदाउट कैफीन?
1: मतलब उसमें टेस्ट सेम ही होता है, बट उससे क्या कहते हैं, एडिक्शन नहीं होती उससे।
0: कहते कि गुस्से शिकवे दूर करने का तरीका है चाह, सिर्फ चाह थोड़ी है। गुस्से शिकवे दूर करने का तरीका है चाह, सिर्फ चाह थोड़ी है, इनू पीण का भी एक सलीका है। हर सिप दे नाल दिलां दे भेत जो खुलते ने, इनू पींदे गल्लां करदे लोकी फिकरां नू भुलदे ने। तकरार तो लैके प्यार दीआं गल्लां, जित तो लैके हार दीआं गल्लां, जिसनू लत लग जावे फिर इहदे बिना आउंदा क्या बात आ। सो जिसनू लत लग जावे फिर इहदे बिना आउंदा दस दे नुकसान उहदा गवाह, ते चाह सिर्फ चाह थोड़ी आ। गुस्से शिकवे दूर करन दा तरीका है, ते इहनू पीण दा वी इक सलीका है, चाह सिर्फ चाह थोड़ी आ।

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने लई या सलाह लेने लई आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करोना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो
6: ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ
5: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ

0: अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: क्या बात है, जरूर पहुंचो ते तुसी सिंपल इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट तो वधिया टॉप दिन डीलां लो। रॉयल ऑटो सेंटर दे साडे मिस्टर राज बाई जी हाजिर ने। ऊबर या लिफ्ट दी सेफ्टी इंस्पेक्शन करवानी है, गड्डी दी इंजन ट्रांसमिशन दा ई टू जेड कोई भी पंगा पिया तां याद रखो वन एंड ओनली इको एक राज बाई जी रॉयल ऑटो सेंटर स्टील्स एंड मेलनी। नंबर है 9057991478 9057991478 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਆ।

स्थान निर्मल गुण गाव नित नीत्र गई ब्याज उमरे जन्मीत मन बच कर ध्याई नानक तेरी सरनाई गौरी महला पंजवा नेत्र प्रगाढ़ गुरुदेव पाद हम प्रभ कृपा नानक नाम जपै साध संग हर अमृत पीवै गौड़ी महला पंजवा फिर कर मैं सहु अर्जन प्यारे सतगुर तुमरे का सवारे रहा दुष्ट दूता

0: सर्वपरे प्रभ अंतर्यामी नानक
1: में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज स्पेशल देखने के चाहिए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।
0: खेद कर अरे बहुत संताप है आयो शरण तुहारे कर हार अनेक पापाती छोड़ ना ही एक बात सुनता की होता कर कृपा है संति मंत्र दियो मोहिनी निर्भव गुर का सब कमाया जी है।

सतगुर की शरणाई जाति सेव न बिरती जाई रहा। कर्म है सुख बाहर पर सुख प्रभु अपने भय दयाला।

0: ਮੁਖ ਸਭਨਾ ਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਆਜ ਪਹਰ ਜਾਨਾ ਤੁਮਕੋ ਮਿਲੀ ਪੂਰਨ ਕਾਲ ਅਮਾਰੀ ਹੱਥੀਓ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਦਾ ਰੱਬ ਲੈ ਹੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰੱਬ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ
1: ਜੋ ਮਾਫੀ भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि
2: नॉर्थ अमेरिका का सब तो बड़ा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
3: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400
0: आनंद विनोद मंगल गुणगाव गुरु नानक भय दयाला जय जयकार भय जग पीतर।

0: विनाशनम् महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा इति इन्द्रकृतः
1: भवज सकल शुभा सिद्ध करे हनुमान जय हनुमत संत हित काली सुनि जय भगवत भवानी वंदे काली विलंब ने की जय आदि गौर महासुख की जय जय से बोध सुंद परिमान संसार कर बैठी विस्तार आगे जाए लोकनी लोक मार गुलाब जय सुलोका जय विभीषण को सुख दी गा सीता ने कपन पकड़ी गा बाजू गाले सुंद मामूरा आदि आदि जमता कर बोला अशोक कुमार कुमार सनातन रूप लगे तिलक को तारा समान लंक कर गई जय जय गुरु सुख नर हरि अब विलंब ते कारण स्वामी कृपा

आप सभी श्रोताओं घर में बहुत प्यार अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया मौसम है, आप एंजॉय कीजिएगा। और मदर्स डे है, आप सभी माताओं को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो पहली बारी माई बनी है उनको भी बहुत सारी मदर्स डे की शुभकामनाएं। और अब आपके लिए हम प्रोग्राम लेके पेश हुए हैं, तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे आपका। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अगर आपने अपनी मदर के लिए बढ़िया सा टीवी लेना है, फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, आपको किसी तरह का भी कोई भी सामान चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए ग्वाल्फ में है। तो आप फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, टीवी, या सोफा घर में, या बाहर आउटडोर बारबेक्यू सोफा लेके देना चाहते हो अपनी माम को, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर उनकी स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए। 905-709-0045-799-0055 आपके लिए नंबर है। तो अगर आपने सोने के गहने खरीदने हैं, सोने की बार्स खरीदनी है, या फिर आपने छोटे छोटे आपके लिए प्रेजेंट चाहिए मदर्स डे के लिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे चाहिए। अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए मॉल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं, 905-673-0100। उनके पास डिजिटल गहने हैं और ब्राइडल सेट्स हैं। अभी शादियों का सीजन पूरे जोर पे है, तो आपको शादियों के लिए गिफ्ट चाहिए, जहाँ फिर आपने मदर्स डे के लिए गिफ्ट खरीदना है, डायमंड्स अप टू 70% ऑफ मिलेंगे। तो अल मदीना ज्वेलर्स आप सभी को, उनकी पूरी टीम मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो, 905-673-0100 पर आप अल मदीना ज्वेलर्स को कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी ट्रक रिपेयर करवानी है, तो आप बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर पे जाइएगा, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। और जानकारी के लिए 905-625-0055 पर कॉल कीजिए।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਡਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-1613-1165।
1: मदर्स डे के लिए अगर आप सभी भाई बहन इकट्ठे हो रहे हो, आपको खाना ऑर्डर करना है, बढ़िया खाना आपको मिलेगा क्योंकि उनके जो टर्नओवर है बहुत है, तो इसलिए आपको खाना जो होगा बढ़िया मिलेगा। तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जरूर जाइएगा, तो वहाँ पे आपको उनकी पूरी टीम आपको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामना है स्काई डोम ऑटो की तरफ से भी। और फिर आपको अपने अगर किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी किचनर वाटर गोल्फ में बेचनी है, खरीदनी है, तो आप कॉल कर सकते हो। जी हाँ, नसीब सेंट को कॉल कीजिए 519-546-1256-1260 पे, आप उनको कॉल कर सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं और तो उसी की उसी में से आपको ये बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस वेरी क्लासिक माया फिल्म का देवानंद लता जी का गाया हुआ गीत है रफी साहब के साथ।

से नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके तेरी बोले, जहाँ जुल्फ रहूं उसी मंदिर तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की मैं

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है और गाने भी जो मैं चुन रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आइए अब आपको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। पंजाबी का गाना है, बहुत ही बढ़िया। तो आपको वो गाना सुनाती हूँ पंजाबी का। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो पहले आपको बता दें, अगर आपने ऐसे करियो आप कि आपने अगर जी हाँ तो अगर आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है तो अपना टैक्स जरूर भरिएगा।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सार हूँ। आपके होस्ट मीरा, अब अपने आप सोने के गहने, सोने की बार, जहाँ आप छोटे छोटे सेट खरीदना चाहते हो, डिजिटल गहने खरीदना चाहते हो, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए मॉल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, और उनकी स्पेशल्स का फायदा उठाइए। मदर्स डे स्पेशल्स, आपको डायमंड अप टू 70% ऑफ मिलेंगे, और ब्राइडल गहने चाहिए आपको, आप चाहिए अल मदीना ज्वेलर्स को। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कीजिए 905-673-0100। आपको अपनी माम के लिए बढ़िया टीवी लेके देना है, लेटेस्ट फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, किसी तरह के भी आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यूज, घर के अंदर फर्नीचर, वन ऑफ ए काइंड, बढ़िया प्राइस, बढ़िया क्वालिटी, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में 905-799-0045, 9057-99-0045। अब समर आ गई है, तो बहुत सारे लोग घर घर की नए नए घर खरीद रहे हैं और उनको मूविंग करना है, तो अगर आपको एचके मूवर्स को कॉल कीजिए, बहुत बढ़िया उनकी टीम्स हैं, बढ़िया प्राइसेस हैं, बढ़िया तरीके से आपके सामान को मूव करते हैं, तो आप आज ही उनको बुक कर लीजिए। उनका ट्रैफिक 416-524-404, 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। एचके मूवर्स पूरे कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं, एचके मूवर्स। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार।

जी हाँ, वाकई ही जिंदगी अनारकली फिल्म 1953 में जब बनी थी तो उसी साल में मेरा भी जन्म हुआ था। तो देखो आज वही गाने में जो उस जमाने में बने थे तो उन्हीं को मैं अभी आपको सुना रही हूँ। देखो क्या बात है ना, टाइम टाइम की बात है, जिसे कहते हैं कि टाइम इज अ बिग थिंग। वक्त वक्त जो है ना, अगर वक्त कम इस्तेमाल करते, या कभी वक्त कम ऐसा आता है जब उसका फायदा हम नहीं उठाते, जाता है तो कभी बहुत खुशियां होती हैं जिंदगी में और फिर कई बारी बहुत गम आ जाते हैं जिंदगी में। तो बस ये जो वक्त है ना, ये हमें हो रुलाता है, हंसाता है, हमारे साथ बहुत सारी गेम्स जैसे होती हैं। लेकिन ये है कि हमें इसके लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, सोचना है कि कैसा वक्त है, उसको सेंस करना है। जैसे कि कई हम इकट्ठे होते हैं तो उसका भी वक्त होता है, तो देखना होता है कैसा टाइम है, किस तरह के लोग हैं, कैसा वातावरण है, उसी के मुताबिक हमको अपना जो सोच है, जो अपना बर्ताव है, वो करना होता है। अगर अगर उसके मुताबिक हम नहीं करते तो जिंदगी में फिर सफर करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वक्त वक्त जैसे कि उम्र का हिसाब है, वो भी वक्त है कि अभी जब हम इतनी उम्र के हो जाएं और फिर उसका उसमें लोगों का अच्छा सोचे ना, अच्छा बर्ताव ना करें उनके साथ, हमेशा उनका खिल्ली उड़ाएं, मजाक करें, तो नीचा दिखाएं, तो ये सारी चीजें एक वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हवा में उड़ जाती है। अगर आप किसी को नीचा दिखाते हो, ऊपर हवा में उड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि सामने वाले बंदे के दिमाग में आपका जो लाइफस्टाइल है उसका छाप छोड़ जाता है, और आपका स्टैंडर्ड क्या है उसका छाप छोड़ जाता है। अगर कोई किसी का ऐसे खिल्ली उड़ाने वाला उड़ाता है, किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाता है, तो उसका अपना वो अपने आप का ही दिखाता है कि वो जिंदगी में कहाँ तक उसकी सोच है। जो सामने वाला बंदा होता है वो तो एक दो पल के लिए वहां पे है उसके सामने, फिर चला जाएगा, लेकिन जिंदगी भर उसके दिमाग में ये चीज एक खटकने लगेगी। जब भी वो उस बंदे को देखेगा तो उसके बारे में जान जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो उसके सामने जाने से जाएगा जरूर। ऐसे छोड़ तो नहीं सकते जिंदगी में किसी को भी, लेकिन यह है कि उसके साथ थोड़ा केयरफुल होने लग जाएंगे, और फिर किसी ना किसी तरीके से उनको बोलना जरूर चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा नीचा दिखाने वाले की एक बंदे की आदत होती है ना, वो सभी को नीचा दिखाता है, उसका उसके लिए एक मजाक होता है, लेकिन सामने वाले को हर्ट होता है, तो उसको ये फीलिंग उसकी उसको मालूम नहीं है कि किसी का फीलिंग मैं हर्ट कर रहा हूँ। अगर किसी की फीलिंग, अगर आपकी फीलिंग हर्ट कोई कर रहा है इस तरीके से, आपको जरूर किसी ना किसी तरीके से उसको ये संदेश मैसेज जरूर देना चाहिए कि भाई मैंने तो आपके साथ बात ही की तो आपने मुझे नीचा दिखाया और मुझे हर्ट किया। क्या होता है कि कई बार जिंदगी में आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हो और तो उसकी वजह से भी लोगों को ये चीज खटकने लगती है, तो फिर वो तरीके ढूंढते रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको नीचा दिखाएं, जहां भला बुरा कह सकें। तो क्या होता है कि कोई किस्मत तो छीन नहीं सकता, जो आपकी अचीवमेंट आपकी है वो कोई छीन नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं उनका खुद का अपना कोई ऐसे वजूद नहीं होता है, तो दूसरों को वो इस तरह की बर्ताव करते हैं, तो नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को दो पल के लिए मिले हैं तो उनके साथ अच्छा, इतना अच्छा बर्ताव करें कि उनके मन में एक छाप सी रह जाए कि भाई मैं उस बंदे को मिला तो कितना अच्छा था, मेरे को भी बहुत सारे मिले थे। देखो एक 2-3 साल पहले ब्रैम्पटन में समर टाइम का फेस्टिवल, अभी भी वो जैसे ही वापस आने वाला है, वो ब्रैम्पटन में होने वाला है, वहां पे डाउनटाउन में प्रोग्राम, तो कल्चरल प्रोग्राम, तो उसमें आने वाला है, इंग्लैंड से जस्सी आया था, तो मेरे को और भी सिंगर्स वहां पे आए थे 2-3 साल पहले, तो वो भी मुझे मिले सभी लड़के, पर जस्सी मुझे इतने प्यार से उसने जप्पी डाली कि
कि वो जो जब भी उसने जिस तरीके से मुझे डाली, मुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। इतना लविंग केयरिंग तरीके से उस लड़के ने मुझे जब भी डाली कि मुझे, वो जस्सी का सिंगर है, तो इतना प्यार से उसने मेरे को किया कि मेरे को सारी जिंदगी याद रहेगा कि हाँ उसने मुझे जब भी डाला था। तो ये होता है एक्सप्रेशन, क्या कुछ सेकंड के लिए मैं उसको मिली हूँ तो उसका उसको मैं हर रोज जैसे कि मुझे वो याद आता रहता है। इस तरह की, या आपको शॉप छोड़नी चाहिए, तो वो तो मेरे से बहुत दूर, हजारों मील दूर है, और फिर हम लोग इतना मिलते भी नहीं हैं, तो फिर कभी पता नहीं कब मिलेंगे। तो लेकिन ये है कि उस एक जप्पी ने मेरे मन में उसकी छाप छोड़ दी। तो इसी इस चीज की मैं बात कर रही हूँ कि आइए अब आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। अगर आपने अपना टैक्स अभी तक नहीं भरा है तो आप अपना टैक्स भरने के लिए गुरप्रीत रोटे को कॉल कर लीजिए। और अब अगर टोरंटो आसपास के इलाके में आप घर खरीदना बेचना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो। जी हाँ, आप कॉल कर लीजिएगा खुशवंत बैंस को, 816-670-1313-416-677-1313। और आपको फिर घर खरीद के मूव भी होना होता है तो एचको मूवर्स को कॉल कीजिएगा, 416-524-8004। बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामान को मूव करते हैं, और उनकी टीम्स हैं, प्रोफेशनल हैं, और पूरे कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं। आइए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। जो लता जी और मुकेश जी का गाया हुआ गीत है, मदारी फिल्म 1959 में आई थी। लेकिन अगर आपके इसके कॉस्ट्यूम, जैसे पहले पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट वाली मूवीज हैं, उनमें बहुत सारी मूवीज में वेस्टर्न आपको टच मिलता है, बहुत सारी ड्रेसेस उन्होंने पहनी होती हैं परफॉर्मर्स ने, सिंगर्स ने। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। आइए अब आपको ये गीत सुनाती हूँ। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सवादा भला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वाथ सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ।

0: जो मर्जी कही जान, भी इह जहाँ टाइम चलता हो जहाँ चलता। मेरे को
1: हाँ जी
0: 22,000 बच गया। मैं स्टोरी समझा उस समय भाई जी, मैं इन्वेस्टर्स पिक किए, मेरे को तो पैसे ही नहीं मार्केट च एंटर होने।
1: हाँ जी
0: मैं इन्वेस्टर्स मार्केट च एंटर होने,
1: हाँ जी
0: मैं इन्वेस्टर्स पिक किए जिहड़े पैसे नू लाउंदे सी मेरे नाल ते रिटर्न लै रहे सी। आप वो ट्रक चलाउंदे सी दोनों जने,
1: हाँ जी
0: एक जना आई टी सी एक ट्रक चलाउंदा सी। उन्होंने तो मैं मिल के इन्ने पैसे बनाए कि मेरे को 1.5 लाख डॉलर हो गया एक साल के।
1: हाँ जी
0: 1.5 तो 3 करोड़। मैं की कहना नॉर्थ अमेरिका की पॉलिसी आ, पहला 1 लाख डॉलर तो पहला 1 मिलियन कमाना औखा,
1: बिल्कुल
0: वो तो बाद बंदा आपे कमा लगता। तुम इतों बंदा कट के अफ्रीका लै जाओ भाजी, अफ्रीका च भी एम्पायर खड़ा कर दो। इतों बंदा कट के इंडिया लै जाओ, इंडिया का सिस्टम गंदा ना हो। गंदा समझावा किमें, एक बंद ने मैं उत्थे एक बंदा मिलया कैंटन फेयर से, वो कहता भाई जी मैं दुध का काम स्टार्ट किया इंडिया च।
1: हाँ जी
0: हुण दुध जिहड़ा इंडिया च एक ऐसी प्रोडक्ट है गुरमुख
1: हाँ
0: अपना
1: जी
0: कारण कि तुसी जिन्ना मर्जी प्रोड्यूस कर दो उहदी डिमांड नहीं खत्म हो रही इंडिया च। सब
1: हाँ जी
0: प्रोडक्ट
1: बिल्कुल
0: बहुत ने दुध दे। हुण उन्हें की किया, दुध की फैक्टरी ला ली, प्योर दुध बेचना शुरू करता मशीना ला के। 2 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लाता उन्हें। उहदा एक मैनेजर सी जिहड़ा किसे नाल मिल गया, वह रस्ते दे विच्चों पाउडर का संथैटिक दुध बना के बेचण लग गया बच्चे इन्हां दे दुध दे नाल।
1: हाँ जी
0: वह संथैटिक दुध दे विच अरैसट हो गया क्योंकि पॉइजन आ। वो आ जिहड़ी इंडिया तो
1: हाँ
0: आ के
1: जी
0: मठियां नहीं खाते, गप्पड़ गप्पड़ खाने उन्हें 4-4 डॉलर पाउंड वालियां,
1: हाँ जी
0: यह जहर खा रहे होने तुसीं, कैंसर की बीमारी खा रहे
1: बिल्कुल
0: होने। वो कारण दस दिना की आ, इंडिया तो चली अलग टैंपरेचर, बनी अलग टैंपरेचर, फ्रिज फ्रिज च गई अलग टैंपरेचर, फ्रीज फ्रोजन हो गई अलग टैंपरेचर, वापस आके फिर फ्रिज च गई अलग टैंपरेचर, थोड़े घर के टेबल से अलग टैंपरेचर। दुध में 5 टैंपरेचर च नहीं रख सकते भाजी, वह जहर होंगे जी। 499 पाउंड नहीं चल दी फलाना फलाना फैक्ट्री, 499 उतों आई होंगे, 2 डॉलर की पैंती है इन्होंने उतों आई हुई।
1: हाँ जी
0: वो 2 वाली तुम्हें 5 की बेच देंगे ने, तो तुम भज भज चकते हो सस्ती है, पर है वह जहर पॉइजन आ,
1: बिल्कुल
0: कैंसर की बीमारी का जड़ा हो। अच्छा मैं अगे जान लग्या होंदा की आ, वह कहता जी मेरे वो बंदा फड़या गया, पुलिस आ गई मेरे घर, छापा मारता मेरे आके। वो छापा मार के हुण उहने तां नहीं मैनूं कहा भी मैं की कीता, मेरा खेड़ा किवें छुट्टिया, कहिंदा साबित हो गया बाद चों, जिवें बहुत जस्टिस सिस्टम नहीं बड़ा तकड़ा हुंदा उत्थे, कहिंदा साबित हो गया भी वह असीं इनवॉल्व नहीं सी उस च। मैं जरे समझ गया भाई, उस तों बाद डर गया होना, समान समून पट के दुबारा आस्ट्रेलिया भज गया होना। ये प्रॉब्लम है इंडिया की, चाइना च यह प्रॉब्लम नहीं भाजी। मैं 3 बंदियां मिल के आया जिन्हां दियां फैक्ट्रियां लगियां करन लगियां, लोगों दियां फैक्ट्रियां कि नहीं चाइना च?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल लगियां भाजी,
0: टोरंटो दे बंदियां ने फैक्ट्रियां लाई हुई ने भाजी, फैक्ट्रियां होरां ने लाई हुई, मतलब ये सारा कुछ मैं देख के आया। सो हुण मैनूं नहीं पता कि कॉल है जी टोंग टोंग टोंग करी जाती है तो आ कटी गई। हाँ जी हैलो, तो ये सब कुछ मैं देख के आया उत्थे। जिहड़े भी लोग ने भाजी, चाहे स्पीडएक्स वाले चाहे करन भाजी तुसी हो, आपां इन्वेस्टर्स नू पिक करो भाजी। सुन रहे हो तुसी स्पीडएक्स तो?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: भाजी, आपां पता की करदे पए, आपां फैमिली मेड बिजनेस खड़े करी जा रहे हैं, दुकानां बनाई जा रहे हैं। वी शुड ब्रिंग द इन्वेस्टर्स इन, इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाउण आपां दे नाल, आपां उन्हां नू क्रेडिबिलिटी दे तौर ते रिटर्न दिखाईए कि रिटर्न मिलेगी ओह मिलेगी। जदों इन्वेस्टर नू गारंटी हो जाती है कि प्रोडक्ट के उत्ते मैनूं रिटर्न मिलेगी ना भाजी, इन्वेस्टर कदे भी भजदा नहीं हुंदा। आपां की करदे, सारा काम अपने लोन ते अपने कैपिटल ते करी जा रहे हैं, ते आपां ही हेडेक लै रहे हैं। आपां एक सिस्टम खड़ा कर सकते हैं भाजी, जिहड़ी जिहड़ी थोड़ी थोड़ी टेप आ ना, तुहानूं टोरंटो पहुँच टॉप ऑफ लाइन जिहड़ी आ 300 डॉलर तो उपर नहीं पैनी चाहिए, 300 या 400 डॉलर तो उपर।
1: बिल्कुल
0: हुण मार्केट देख लो कि वड्डी, अमरीका जिन्ने च मर्जी बेच दो, कनेडा जिन्ने च मर्जी बेच दो, वड्डी मार्केट है ना।
1: बिल्कुल
0: वी शुड वर्क लाइक दैट। पर फिलहाल मेरे नाल करण आ, करण तुसीं मर जा मैसेज दिओ साफा टर्बन दा। साफा टर्बन ब्याहां शादियां दे विच, मैं कहिंदा ना डेस्टिनेशन वैडिंग दे विच एक टॉप ब्रांड स्टोर आ जिहड़ा पूरे दा पूरा ब्याह थोड़ा एडजस्ट कर दिंदा। इहनां कोल पार्टी हॉल भी हैगा, इहनां कोल छोटी मोटी मंगणा रोका करना वह भी हैगा, इहनां कोल सारा कुछ है। तो ये पग्गां बंदे ने डेस्टिनेशन वैडिंग ते जाके पूरी दी पूरी बरात नूं इक्को जिहा बना दिंदे ने, उहनां दे कपड़े तैयार करदे ने। 2 स्टोर ने साफा टर्बन दे, मेल दा अलग फीमेल दा अलग, 158 कैनेडी रोड के उत्ते इन्हों के 8,000 स्केयर फुट का 7,000 स्केयर फुट के 2 स्टोर ने, तुसी जाके देखो कर दियो मैसेज।
1: हाँ जी बिल्कुल सही किया जी, साफा टर्बन वन स्टॉप वैडिंग शॉपिंग स्टोर है जिथे।

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: संत अनूप सिंह जी ऊना साहेब वाले भाई अनंत वीर सिंह जी एल ए वाले भाई साहब जगजीत सिंह जी बबीहा दिल्ली वाले प्रोफेसर परमजीत सिंह जी पटियाले वाले भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल पंजाबी विरसा रेडियो दे सिंह अजीत नु कीती जा सकदी है 6474481000 647 448 1000 सेवा भेजन वास्ते सेवा2022@yahoo.com ते अपनी सेवा भेज सकदे हो
2: हाय चूहा ते कॉकरोच भी सुन लो मेरी गल मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
3: है फिर कॉकरोच तो चूहे वो हाले महीना पहला तो ट्रीटमेंट कराई सी
2: मैं तेरा पहला ही क्या सी सस्ते दे चक्कर च ना पो हुण ऊपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ
3: मैं तो कहना घर ही बेच देने आ
4: आप घर चो बाहर क्यों जाना चूहे कॉकरोचां नू कड्डो टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स रेस्टोरेंट होटल्स मोटल्स नर्सिंग होम्स विच वी

0: जंक्शन लेके आए ने स्पेशल ऑफर्स फॉर फेस्टिव सीजन। खास फेस्टिव सीजन ले कैटरिंग स्टार्ट सिर्फ 9.99
1: जिस विच मिलनगियां 8 आइटम्स ए लाइव कैटरिंग भी कर देने।
0: फंक्शन बड़ा होवे या छोटा कैटरिंग वाला ता सिरा ला देंगे।
1: एना कोल शानदार पार्टी हॉल भी आ, वो भी रीजनेबल फूड प्राइसेस से।
0: इस फेस्टिवल सीजन बनाओ अपनिया खुशियां नु दुगना ते पहुंचो टिक्का जंक्शन।
1: कॉल 6474294040
0: टिक्का जंक्शन, खुशियां दा सेलिब्रेशन।
2: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना कर सारे तो सोना हो भी।
3: बस इन्नी गल।

0: जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, देव तातले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।

0: ਦੋਸਤੋ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਰੂਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ 437-264-3175 437-264-3175 4372643175 ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ
1: ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
0: ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਤੇ 'ਚ 40,000 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 80,000 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸੋ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਸੋ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ PR ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਹੈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ। ਆਪ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ, ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ 2024 ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੇ $70,000 ਸੇ ਕਮ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੀ ਟੁਗੈਦਰ, ਤੋ ਹੀ ਆਪਕੋ ਇਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
0: ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੈ ਬਟ ਉਨ ਉਨਕੀ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਹੀ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਲੋਨ ਹੀ ਉ
1: से फीस कवर हो जाती है कॉलेज की. okay. अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, फीस कवर हो जाएगी ग्रांट से. और लेकिन आपको लोन आएगा 15 से 16 हजार डॉलर का सिर्फ.
0: okay.
1: वो भी अगर
0: जो कोई सिंगल बंदा वो स्टडी करना चाहुंदा तां जेड़ी ग्रांट आऊ वो उन्नी कु ग्रांट आऊ कि वो आपदी फीसा भर सके. फीसा गवर्नमेंट ने भर देनियां ने. एंड जेड़ा लोन आ वो ऑप्शनल हुंदा ही जां लेना ही लेना पैंदा?
1: वो ऑप्शनल है और ज्यादातर लोग लेते हैं. कोई अगर मना भी करता तो जब दोस्त में फोन आ जाता है, मैं ऑफिस आ जाते हैं, सर वो लोन भी करी दो.
0: ओके, हुण सिनेरियो नंबर 2, जे हस्बैंड वाइफ आ 2024 दी नोट्स ऑफ असेसमेंट दी गलबात करिए, जे वो दोनों जने 30,000 एक कमा रहे हैं, 30,000 एक 60,000 उन्हां दी फैमिली इनकम आ, चाहे दोनों जॉब कर रहे ने पर दोनों दी फैमिली इनकम घट आ, तां अवेलेबल हैगे ने वो, एलिजिबल हैगे ने?
1: बिल्कुल जी, ये अच्छा केस है. इसमें इनको अगर हस्बैंड वाइफ है, सिर्फ किड्स हैं इनके? आपने क्या
0: रखा? नहीं, वो जस्ट मैरिड कपल.
1: हाँ जी, मैरिड कपल है. तो इनको नेट ग्रांट जो घर लेके जा रहे हैं वो केस बाय केस 10,000 to 15,000 डॉलर है. और मतलब फीस निकालने के बाद.
0: ओके ओके, ठीक है.
1: हाँ जी.
0: एंड लोन वो कितना का लोन मिल सकता है जी? जेड़ा
1: विदाउट 17,000 to 18,000 का लोन. मतलब इनको टोटल फंडिंग जो बनेगी वो बनेगी, आप मान के चले 30,000 डॉलर अप्रोक्सीमेटली जो इनके खाते में आ रहा है. मैंने कॉलेज की फीस 11,000 या 15,000, इसके बीच में कॉलेज की फीस चेंज कर दी डिपेंडिंग ऑन कोर्स. मैंने माइनस करके आपको बताया.
0: ते होने जे अगले केस दे विच उन्हां दे एक बच्चा का की फर्क पोगा?
1: हाँ जी, तो इनकी जो इनको इस केस में हस्बैंड वाइफ में से एक या दोनों पड़े तो उसपे थोड़ा सा फिगर आउट होगा. फंडिंग डिपेंड करेगी, बट अप्रोक्सीमेट फंडिंग इस केस में 45,000 to 60,000 डॉलर. हाँ जी, अब इसके इसमें ज्यादा फंडिंग आएगी. इसमें जो फंडिंग जो इनके खाते में गिरेगी दैट विल बी फ्रॉम 45,000 to 60,000 डॉलर.
0: फिर जो दो बच्चे नहीं तो और बाजूगी जी फंडिंग?
1: दो बच्चे हों फिर तो वो और अच्छा, मतलब मान के चले अप टू 80,000 डॉलर की फंडिंग बन जाती, जिसमें से आधा पैसा ग्रांट आधा पैसा ऑप्शनल लोन एट 0%.
0: जे मतलब के दोनों पार्टनर चो एक पार्टनर घर दे विच जॉब नहीं कर रहा जां हाउस वाइफ आ जां कोई भी रीजन आ, ते दूसरा पार्टनर है जेड़ा वो सेल्फ एम्प्लॉयड आ, ते वो उन्हां दी इनकम 20,000-30,000 ही है, यानी कि वो ते दो बच्चे ने, फिर वो केस पास
1: है? तो इस केस में दोनों को करना चाहिए. और जैसा मैं बता,
0: अच्छा दोनों अलग अलग भी कर सकते ने?
1: हां जी,
0: दोनों अलग अलग भी कर सकते ने?
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: अच्छा,
1: अगर आपके बच्चे अगर मान के चले एक या दो है तो आपको बेनिफिट है इसका दोनों को करने का. हस्बैंड वाइफ दोनों हस्बैंड वाइफ फुली ऑनलाइन कोर्स करते ने, घर के कम्फर्ट से करते हैं. 2-3 घंटे, नो एग्जामिनेशन, ओनली सिंपल असाइनमेंट्स, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, अटेंडेंस आपकी एवरीडे 3 आवर्स ऑनलाइन फोन पे कंप्यूटर पे होनी चाहिए, 75% है ना, तो ये क्राइटेरिया, इसका एज लिमिट कुछ है नहीं, क्रेडिट चेक इसमें गवर्नमेंट आपका कुछ करती नहीं है।
0: सो जी मैं दोबारा समझा कि पहली चीज ये प्रोग्राम सिर्फ जेडे पीआर ने सिटीजन ने उन्हें लिए है, नंबर टू जेडे तुहाडी जे 2024 दे नोट्स ऑफ असेसमेंट ते इनकम 70,000 तो घट आ उन्हें लिए है, तुसी सिंगल हो ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਉਨੀ ਕੁ ਗਰਾਂਟ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ 15,000-20,000 ਦਾ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੋ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਆ ਮੋਰ ਸੂਟੇਬਲ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੋਰ ਸੂਟੇਬਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ?
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਤੇ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ। इसलिए हम आपको डालते ही सिंपल कोर्सेज में है जो फुली ऑनलाइन है, इजी टू पास है। आपका हम एडमिशन आईआईटी में नहीं कराते, सिंपल कॉलेजेस में कराते, पर आराम से पास हो जाएंगे 2-3 घंटे क्लासेस लगा के एवरी डे। ऑन अदर हैंड अगर आपको एचवैक पीएसडब्ल्यू ईसी वाले कोर्सेज करने जो कि फुली ऑनलाइन नहीं है, हमारे पास वो भी कोर्सेज है, गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट उनकी फीस डायरेक्ट पे करती है कॉलेज को, आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए सेपरेटली फंडिंग देती है 30,000-100,000 तक। तो इसमें से आधा पैसा क्या है? ग्रांट। जुलाई के बाद रूल चेंज हो रहे हैं, लोन आएगा, ग्रांट नहीं आएगी। अभी एनरोल करें, जैसे गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स डेंटल केयर, रिफ्यूजी हेल्थ केयर, रिफ्यूजी अकोमोडेशन में लगाती है, वैसे गवर्नमेंट एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, कोई कैच नहीं है इसमें। दैट्स इट।
0: तो पैसा भी कितने भी यूज कर सकते हैं?
1: बिल्कुल जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पैसा आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। किसी के लिए है ग्रोसरी करना, कोई बैक होम बेचता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो लोग एनरोल्ड है वो सेकंड थर्ड फोर्थ कोर्स कर रहे हैं, और जो रह गए हैं वो रह ही गए हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज करने वाली है, लेकिन बहुत लोगों की इसका लाभ पहले ले चुके ने,
0: थोड़े लिमिटेड बैच ने।
1: बिल्कुल जी, 3 बैच रहे गिनती के, मे बैच पूरा फुल, अगर आप बोले मे में एडमिशन कराओ, नहीं होगा जी, फुल है हमारा बैच। अब जून का बैच है
0: जी। सो यूनी ग्लोबल तो नागपाल जी सानू जानकारी दे रहे ने। तुहाडे मन दे विच होर बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होणगे, काफ़ी कोशिश तो मेरी हुंदी है कि मैं सारी चीज़ां पुछ भी लवां, पर इन्हां दा ऑफिस भी खुला गा, इन्हां नू कॉल तुसीं राइट नाउ कर सकदे हो, ते फोन दे उत्ते ही एवैल्यूएट करके दस दोगे कि असीं एलिजिबल है जां नहीं।
1: बिल्कुल जी, 5-10 मिनट लगते हैं, मैं फोन पे इनिशियल हो जाता है एवैल्यूएशन, और कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है जी हमारी एवैल्यूएशन की सर्विस। ते
0: इहदे विच जे अज्ज आपां अप्लाई करदे किन्ने टाइम च पैसे आंदे?
1: आप मान के चले आपको जिस दिन बैच स्टार्ट हो रहा है उस दिन के मतलब 1 वीक में आपसे गवर्नमेंट आपका बैंक इन्फॉर्मेशन लेती है, जो कि आप खुद अपने घर पे भरते हैं, और उस दिन से 30-90 डेज के बीच में आपके अकाउंट में फंडिंग आराम से आ जाती
0: सिद्धा है। सिद्धा कोल नहीं होगी, सीधा जेड़ा बंदा अप्लाई करो उसके खाते च जाओ ते तुहाडी फीस।
1: हमारी फीस काम होने के बाद आपके जब अकाउंट में फंडिंग हो जाती है, आपने अपनी ईमानदारी से हमारी फीस देनी है, जो कि रेंज करती है 199-499 तक।
0: कॉल कीती जा सकदी। बहुत शुक्रिया भाई जी, धन्यवाद।

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। आप सभी के दिलों पर मौसीकी की दस्तक देकर थोड़ा सा मदहोशी के आलम में ले जाने के लिए शेरो शायरी से लबरेज चंद गजलों का एक मुख्तलिफ सिलसिला लेकर हाजिर हूं, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां। दिल से जब दिल की बात होती है तब मुकम्मल हयात होती है। आंखें खोलें तो दिन निकल आए, बंद करें तो रात होती है। जिसकी आंखों में ख्वाब होते हैं उसकी ही कायनात होती है। एक मुकम्मल मुख्तसर जुबान है जब आंखों आंखों में बात होती है। बात नजरों की चली तो फिर दूर तलक जाती है, क्योंकि इनकी भी एक मुख्तलिफ जुबान होती है। बशर्त है इन्हें पढ़ने और सुनने वाला समझने वाला होना चाहिए। तो पेशे खदमत है एक खूबसूरत गजल जिसे आवाज दी है गुलाम अली।

दिल गुमसुम जुबां खामोश क्यों है, ये आंखें आज फिर नम क्यों है। जब तुझे कभी भी पाया ही नहीं है तो फिर आज खोने का गम क्यों है। माहौल गुमसुम हो तो इंसान भी उस माहौल में गुमसुम सा हो जाता है, मगर उस वक्त चाहने वालों को अगर किसी का इंतजार होता है तो बस किसी अपने का। अब आपकी नजर पुरसोज पुरनूर दिलकश आवाज जगजीत सिंह की।

प्यार करना सिखा दीजिए, मुझको मुझसे मिला दीजिए, दर्द दिल का जरा कम तो हो कोई ऐसी भी दवा दीजिए, रह के खामोश मेरे ऐ सनम यू ना सजा दीजिए, मेरी तिश्नगी को मोहब्बत का समंदर बना दीजिए। समीन रंगों की इस महफिल में कुछ रंग बेरंग भी हो जाते हैं, तो आइए कुछ ऐसे ही अंदाज में गाई हुई एक खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूं, जिसे अपने दिलकश आवाज के साथ नवाजा है लता मंगेशकर।